0: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टलकर समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
1: मेरी
0: है
1: भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए, कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
1: मंडरा,
0: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: ओके दैट्स इट।

हमको प्यारा प्यारा रामायण कथा सबको प्यारा. द स्टोरी ऑफ द रामायण इज मोस्ट प्लीजिंग टू ऑल. इट ऑफर्स द पाथवे टू हैप्पीनेस एंड द मेनी सिनेरियोस वी फाइंड देयर इन सर्व टू कीप अस ऑन द राइटस ट्रैक. पिता पुत्र का प्रेम दिखलाए साक्षी है राम भगवान हमारा. रामायण स्पीक्स ऑफ द लव बिटवीन अ सन एंड हिज फादर एंड दिस इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय श्री राम एंड द किंग दशरथ. भ्रातृ प्रेम रामायण गावे. ऑफ कोर्स द रामायण सिंग्स द लव बिटवीन ब्रदर्स एज एग्जेम्प्लीफाइड बाय लक्ष्मण एंड भरत. पतिव्रता धर्म रामायण बतलावे. इट रिमाइंड्स अस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस and this relation is examined carefully in this beautiful scenario where Anusuya speaks to Sita. Pinda karm ramayan dikhlaye sakshi hai Bharat aur Ram hamara. Of course emphasis is placed on Pitri Yagya in reference to the story of Ramayan with such performance by Shri Ram.

दुर्गा आदि शक्ति है, निर्बल निर्धन मानव का बल है माँ दुर्गा। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के जितने नाम और रूप उल्लेखित हैं, सभी नाम और रूप सर्वथा और सर्व स्थानों पर पूजित हैं। माता दुर्गा देवताओं की शक्ति में है, भक्तों की भक्ति में है।

0: जाओ
1: सोलिया सोलिया सोलिया सोलिया ओ माय गॉड
0: अभी ना जाओ
1: ए ए ए ए ए ए ए डोंट डू दैट कालो डोंट डू दैट माय डू दैट टू मी I started to miss my grandfather, my grandmother. I want to marry somebody married better.
0: Ke dil abhi bhara.

Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.